नारक में सर गाय कृत का जब जब फिर बटाई है ज्ञानी बुझेता है सतगुरु संतो का त्रम रथवा त्र त्र जते का जोर रथवा द्वापर तुपे का।

तगना तू दसपूत महला पहला तगना इंद्रिय तगना नारी पलके थप वैन दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेहवा तगना की वेत गापे वत्ते वड़ता गे आवरा